धन्य है परमेश्वर तेरा, धन्य है परमेश्वर तेरा, तेरा वचन धन्य है, तेरा वचन धन्य है। धन्य है परमेश्वर तेरा, धन्य है तेरा वचन धन्य है, पाऊँ मैं आशीष तेरी।

यीशु से करीब आओ, खुदा से तुम क्यों दूर हो, वो मन के अपने करीब है, खुदा से तुम क्यों दूर हो, यीशु अपने करीब है, सबका वो शिफा देता है, वो आत्मा का भी दान देता है, सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु तू मेरा प्रभु, मेरा प्रभु तू मुक्ति दाता। यस प्रभु, तू हमारा परमेश्वर है, तूने जगत से प्यार किया, क्रूस पर हमारा अपना जीवन दिया, हमें प्रभु तूने मुक्ति दिया, शांति दी, अंधेरा हटा दिया और हमें तूने रोशनी दी प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद। सच्ची में प्रभु तेरा धन्यवाद जितना हम करें उतना कम है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति करते प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस प्रभु। हालेलुया, ओ रबा रा शिखा रबा रा शंदा रबा, सहायता कर प्रभु। धन्यवाद करते, तेरी महिमा करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। सच्ची में तेरे जैसा कौन है प्रभु, जो हमें हर मुसीबत में, हर संकट में हमें बचा सके प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस।

दिल में मेरी प्यास बुझा दे, उतरा उतरा उतरा, आसमानी खुशी से भर दे, प्रभु को आसमानी खुशी।

आसमानी खुशी से भर दे मुझको, कमजोर दिल बलवन बना दे, कमजोर दिल को बलवन बना दे, भरपूर करके रहने जा, भरपूर करके रह जा, उतरा उतरा उतरा, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, उतरा उतरा उतरा।

यस प्रभु, तू तो रहा प्रभु, आसमानी खुशी से हमको भर दे प्रभु, अमृत जल हमको पिला दे, हमारे दिल की प्यास बुझा दे प्रभु, हमें भर दे प्रभु,

पड़ा, उसने द क्रॉस तेल उंडेला। यीशु यीशु यीशु मैंने उसे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु यीशु यीशु मैंने उसे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु यीशु यीशु मैंने

की जय जय, उसके कूड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसने दा क्रॉस होते लुंडे ला, यरीहो के किनारे मधुमोहा पड़ा, उसने ता क्रॉस होते लुंडे ला। यीशु यीशु यीशु मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, यीशु यीशु यीशु मैंने

दुआ, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके अंगन में स्तुति करूंगा, मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश खुआ

यस प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते। सारा महिमा सारा आदर तुझे देते प्रभु, क्योंकि तू आदर के योग्य, तू महिमा के योग्य प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद राजा, हालेलुया, धन्यवाद।

मिलके करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, धन्य है तो पवित्र है प्रभु, तू सेनाओं का परमेश्वर है, तेरा तू भला है प्रभु, तू सब कुछ करता है प्रभु, तू ही हमारे जीवन का, तू ही हमारे जीवन की आशा है, तू ही सब कुछ है प्रभु, तू महान है, तू अधिक परमेश्वर है प्रभु, तू राजाओं का राजा है,

मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था ताकि आए हरियाली, तूने सींचा था ताकि आए हरियाली। क्यों न बोलू फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों न बोलू फिर मैं तेरी जय जयकार, जय

कुछ किया यस प्रभु, तूने मेरे लिए सब कुछ किया प्रभु। आई जीवन में खुशी, आई अब दी जिंदगी, तू है जिंदा सा पिया, तूने ही हाय किया। क्यों ना बोलू फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलू फिर मैं तेरी जय जयकार।

यस प्रभु, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। यस प्रभु, तेरी कृपा हमारे लिए सब है प्रभु। तू सब कुछ करता है हमारे लिए प्रभु, धन्यवाद करते। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा तुझ पर प्रभु।

0: आंधी तूफान को पल में थमाया, लाजर को मुर्दे से जिलाया, 5,000 को भूख मिटाया, वो है मेरा मसीहा, तेरे जैसा को दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं, नसरत जैसा कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं, सबसे ऊंचा सबसे प्यारा यीशु का हो नाम रे। अंध को आंखें, गूंगों को बोली, लंगड़े को चलना, भैरे को सुनी, यीशु का हो नाम रे। शैतान ने सबको मुक्ति दिलाया, यीशु का हो नाम रे। शैतान से सबको मुक्ति दिलाया, सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, प्यारा नाम, मीठा नाम, यीशु का हो नाम रे। सबसे ऊंचा सबसे प्यारा यीशु का हो नाम रे। इस प्रभु तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। यस प्रभु, आंधी तूफान को तूने थमाया, लाजरस को मुर्दे में से जिलाया, 5,000 के भूखों को खाना खिलाया प्रभु, अंधों को आंखें दिलाई, मुंह बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, यस प्रभु, कोढ़ी शुद्ध किए गए प्रभु, जिसके द्वार बंद थे उनके द्वार तूने खोल दिए प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा के लिए धन्यवाद, तेरे हमारे पापों को तूने लिया इसलिए धन्यवाद, तूने हमें अच्छा जीवन दिया धन्यवाद। यस प्रभु धन्यवाद करते, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद इस रात के समय के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, क्योंकि तू महान है, तू सुंदर है, तेरे जैसा कोई नहीं, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु, तू महान है प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु, सबके आंसू तूने पोछे प्रभु, सबके कई लोग मरने पर थे उन्हें बचाया है, पीड़ा को बचाया है। आज इस रात के समय में धन्यवाद करते हमारे सारे वो बहन लोग जो बीमार है, पीड़ा में है, बंधन में है, हर प्रभु हम प्रार्थना करते, जो जो प्रभु बीमार पड़े उनके लिए हम विनती और प्रार्थना करते, तो सबको बाहर निकल, सबके जीवन में कार्य कर प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। कितने लोग कैंसर से पीड़ा में पड़े हैं प्रभु, उन्हें आजाद कर दे। हम किशोर भाई के लिए भी प्रार्थना करते, उसके माता पिता का ताबा तू ले प्रभु, उसको आशीषित कर, चंगाई दे प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते, कई लोगों को प्रभु, कई लोग हम सुन रहे, उनकी आंखों की एनर्जी हो रही है, एक आंखों को कैंसर होने जा रहे, हो रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते सभी कैंसर के आत्मा को हम तोड़ते और बांध देते प्रभु यीशु के नाम से, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। सहायता कर, मदद कर, तेरी कृपा तेरी दया हमारे ऊपर बनाए रखना। और हम प्रार्थना करते जितने लोग बच्चे पढ़ाए, जॉब के लिए वेट में रहे प्रभु, उनका रास्ता खोल प्रभु, आशीर्वाद कर, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। सहायता कर, मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते, धन्यवाद प्रभु। निर्मला सिटर को भी तेरे हाथ में देते, उस बेटी की जीवन में भी कार्य करना, आशीर्वाद करना, धन्यवाद लाड़, थैंक यू जीसस प्रभु। इस समय तूने दिया ऐसे धन्यवाद, तेरी कृपा तेरी दया हमारे सबके ऊपर बनाए रखना प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते। इस समय वचन की तरफ जा रहे, आज हमारा विषय है कि प्रभु किस तरह हमारे आंसू को पोंछता है, उसने हमारे हर दुखों को उठा लिया, दर्द को ले लिया, और ऐसा भी वचन कहता है कि प्रभु हमें मृत्यु, ना ही मृत्यु हमें सता सकती है, न अंधेरा, ना कोई पीड़ा। यस प्रभु, हम मांगते, धन्यवाद प्रभु। आइए हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य का 21 चैप्टर 4 का वचन पढ़ते, इधर जॉन अपोकलिस लोगों के लिए बता रहा है, हम सभी लोगों को इधर जॉन उत्साहित कर रहे बच्चन के दर में। आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का रिलेशन चैप्टर 21 वर्स 4। उसमें ऐसा लिखा है, प्रभु हमारे आंसू को पोछेगा। और सच्ची में हमारे आंसू को परमेश्वर ने पोछा है। इसमें पढ़ेंगे 4 वचन कहता है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोछ डालेगा और उसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बार जाती रहेगी। देखो यहाँ जॉन इधर नई आकाश और नई पृथ्वी, नया जरूशलम के लिए बातें कर रहा है और कह रहा है कि हमारी इसराइलियों को कह रहा है उनकी आंखों से सब आंसू परमेश्वर पोछ डालेगा, ना ही उसके बाद मृत्यु रहेगी, ना अकाल पड़ेगा, ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा रहेगी। ऐसी बातें जो पुरानी बातें थी वो जा चुकी है और नई बातें परमेश्वर ने वहां उत्पन्न कर दी। आज आपके और हमारे जीवन में भी ऐसी ही बातें हैं। कई बार हम परेशानियों को लेकर इतने गहरे दम में बैठ जाते कि उधर से कोई हमें बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन यहाँ आज जॉन इधर इसराइली लोगों को तुम्हें और हमें बता रहा है कि हमारे आंसू को परमेश्वर पोछेगा। आंसू को पोछेगा ही नहीं, लेकिन उसके बाद ना हमारे ऊपर मृत्यु आएगी, ना बीमारी आएगी, ना परेशानी आएगी, ना ना अकाल पड़ेगा। ऐसा आज का परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमारे हर बंधन से हमें आजाद करने आया, हमें तकलीफ में रखना नहीं, हमें आशीषित करने आया। प्रभु दुखों से भार उठाकर उसने अपने आप को कुर्बान किया। आज हम मांगते प्रभु मदद कर, सहायता कर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। उसी तरह हम यही वचन से हम इजाया का 25 में भी पढ़ते हैं। उसमें भी कुछ बातें यहाँ परमेश्वर इजाया से भी बात कर रहा है। इधर जॉन से बातें किया और यहाँ जॉन हमें समझा रहा है कि हमारे आंसू परमेश्वर पोछेगा। और इतना नहीं, जब पोछ देगा तभी ना ही विलाप रहेगा, ना मृत्यु रहेगी, ना बीमारी रहेगी, ना परेशानी रहेगी। ऐसा ऐसा और सब पीड़ा हमारी पहली जैसी पहली जो दशा थी वो हटाकर प्रभु नया नई नई अवस्था में हमें लेकर आना चाहता है। वो हमें बंधन से छुड़ाना चाहता है, बीमारी से आजाद करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का आज का वचन यही कहता है, उसने हमारे आंसू को पोंछ कर हमारे हर एक पीड़ा को ले लिया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन इधर आज कह रहा है कि हमारे जब ये आंसू परमेश्वर पोंछ देगा तब ना ही मृत्यु रहेगी, ना पीड़ा रहेगी, ना अकाल रहेगा, ना ही बीमारी रहेगी। ऐसा आज का वचन कहता है। और दूसरी बात इधर एजाया से भी परमेश्वर बात कर रहा है। 25वां अध्याय से हम पढ़ेंगे, उसमें 8वां वचन। उधर परमेश्वर और एक बात कह रहा है एजाया से। इधर तो प्रभु आंसू पोंछने के बाद प्रभु बोलते हैं, मैं कोई भी तुम्हारे ऊपर श्राप या बंधन नहीं लाऊंगा। और यहाँ एजाया से भी प्रभु कुछ बातें कर रहा है। देखो यहाँ हम पढ़ते हैं एजाया का 25 का, उसमें से 8वां वचन देखो क्या कह रहे। निकालते हैं और पढ़ते। परमेश्वर उधर 25 में 8वां वचन पढ़ता है कि वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। देखो पहली बात हमने पढ़ा कि हमारे आंसू पोंछ कर प्रभु ना मृत्यु आने देगा, ना बीमारी आने देगा, ना शोक होने देगा। लेकिन यहाँ ऐसा ऐसे परमेश्वर क्या बात कर रहा है कि मृत्यु सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबके मुख मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। क्या बोलता है वचन कि मृत्यु सदा के लिए नाश की जाएगी और आंसू भी पोंछ डालेंगी। प्रभु बोलता है कि सभी के मुख का आंसू मैं पोंछ डालूंगा और अपनी प्रजा की नाम धराई और सारी पृथ्वी के पर से दूर करूंगा। आंसू भी पोछेगा और सारे पृथ्वी कर पर जो दुख भरे हैं वो भी मैं दूर करूंगा, क्योंकि तो ऐसा परमेश्वर ने कहा है। इसराय को कहा कि मैं तेरी नाम धराई दूर करूंगा, मैं तेरे आंसू पोछूंगा, तेरे ही ने आंसू पोछूंगा, मैं सारे राष्ट्र के सारे पृथ्वी भर के लोगों के आंसू पोछूंगा, सारे पृथ्वी भर के लोगों की बीमारी दूर करूंगा, सारे पृथ्वी भर के परेशानी को मैं दूर करूंगा। ऐसा परमेश्वर ने कहा है, झूठा नहीं कहा है, सच्चा कहा है, और वो कर रहा है। वो आंसू हमारे पोछ रहा है, हमारे मृत्यु से हमें आजाद कर रहा है, बंधन से आजाद कर रहा है, बीमारी से आजाद कर रहा है। और दूसरी तीसरी बात हम देखने जा रहे हैं, वो ये जाए में हम पढ़ते हैं उसमें 60:20 60:20 पढ़ते हैं। उसमें बोला है कि तेरा सूर्य फिर कभी अगस्त अस्त न होगा, न तेरी चंद्रमा की ज्योति मालिन होगी, क्योंकि यह तेरी सदैव ज्योति होगी होगा। तेरे विलाप के दिन समाप्त तो हो जाएंगे। आज हमारे जो परेशानी के दिन रहे हैं ना, रो रहे हैं ना, विलाप कर रहे हैं ना, डर रहे हैं ना, घबरा रहे हैं ना, तो प्रभु कहता है मैं तेरे विलाप का दिन के अंत कर डालूंगा, अंत हो जाएगा। चंद्रमा की ज्योति की मालिन न होगी, और क्योंकि यहाँ तेरा सदैव ज्योति होगा, तेरे विलाप का दिन समाप्त कर देगा। आज प्रभु हमारा और आपका विलाप कर रहे हैं, हम लोग दुखी हो रहे, निराश हो रहे, परेशान हो रहे, बीमारी की वजह से, घर की परिस्थिति और वजह से, घर में पारिवारिक जीवन में जीवन के लिए, कई बच्चे नौकरी नहीं से परेशान है, ऐसे अनेक परिस्थितियों में हम लोग बंधन में पड़े, लेकिन प्रभु मन तो मैं तुमको विलाप में नहीं रखूंगा, मैं उसमें से आजाद करूंगा, मैं हर पीड़ा से तुम्हें आजाद करूंगा। ऐसा परमेश्वर का आज का वचन कहता है, हमें सिखा रहा है। हमें उसी में ही 33 का वचन भी पढ़ते हैं, 33:24 वचन पढ़ते हैं। इजाया 33:24 में देखो क्या कह रहा है प्रभु। वही बात प्रभु बार बार हमें रिपीट रिपीट कर रहा है। 33:24 इधर देखो क्या, कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे उसमें अधर्म क्षमा किया जाएगा। प्रभु इधर कह रहा है कोई भी निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूं, किसी को भी वापस कहना नहीं पड़ेगा कि मैं रोगी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ऐसी अवस्था में हूं। परमेश्वर आज कहता है जय को, जय समझा रहा है उसमें सबको, प्रभु ने इसराइल के लोगों को सबको क्षमा किया, तुम्हें क्षमा किया, हमें भी प्रभु ने क्षमा किया, हमें ऐसे बंधन में फिर कभी नहीं लाएगा, ऐसा इसका वचन कहता है। प्रभु मदद कर, सहायता कर, तेरी कृपा हमारे पर बनाए रख रहा है। और एक लास्ट वचन हम पढ़ते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, और 65:19 पढ़ते, 65:19 पढ़ते वचन, 19 वचन देखो क्या बोल रहा है। मैं आपको यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा प्रजा के हेतु हर्षित करूंगा। देखो क्या बोल रहा है जय को, मैं अपने यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित हूंगा, उसमें फिर मैं रोने या चिल्लाने का शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच थोड़े दिन का बच्चा ऐसा न बुढ़ा हो जाता रहेगा, उसने अपनी आयु न पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष से होकर श्रापित ठहरेगा। देखो परमेश्वर है 19 और 20 में हमें बता रहे हैं कि हरिशरेम अपनी प्रजा में हमें हर्षित करेगा, हमें रोने चिल्लाने को फिर सुनाई नहीं पड़ेगा, हम कभी रोएंगे नहीं, चिल्लाना नहीं पड़ेगा, दुखी होना नहीं पड़ेगा, निराश होना नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी वस्तु कहते हैं, मैं फिर न तो तुम्हें थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बुढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि लड़कपन में मरने वाला है तो 100 वर्ष होकर मरेगा। आज हमें लगता है हमारे बीमारी के कारण मर जाएंगे, परेशानी के कारण मर जाएंगे, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनको 100 साल तक जीवित रखूंगा। वो हमें अच्छा प्रॉमिस वचन दे रहा है, उसने हमें दीर्घायु का जीवन दिया, अंधकार से आजाद किया, पीड़ा से आजाद किया। प्रभु हम धन्यवाद करते तेरे ऐसे वचन सर, हमें मदद कर, गाइड कर प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, मदद कर, तेरे लहू से हमें ढांप दे प्रभु। आज के इस वचन के हम धन्यवाद करते प्रभु, तूने तूने हमारे रोने का आवाज सुन लिया है, छुटकारा दे दिया, अंधकार हटा गया है, मृत्यु को हटा दिया है, हमारे परिस्थिति को बदला तूने, हमारे जीवन को बदला प्रभु, धन्यवाद करते। यीशु मसीह के नाम से मांगते समय, इस रात के समय हम निर्मला सिस्टर, मंजू माँ का ताबा, मनवीर भाई का ताबा और भी अन्य बहने भाई जुड़ते, उन सभी को ताबा तेरे हाथ में देते, तू सबको सहायता कर, मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर, धन्यवाद
1: प्रेज द लॉर्ड, थैंक
0: रेजुरात,
1: यू, गॉड ब्लेस यू। लेट मी प्रे।
0: यस
1: हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड वी प्रेज यू, लॉर्ड वी ग्लोरीफाई योर नेम फादर गॉड। यस, देयर इज नो अदर गॉड टू वर्शिप, देयर इज नो अदर गॉड फॉर अस टू कॉल, there is no other god for us to give thanks, father. Heavenly father, heavenly father, we give you thanks, we glorify your name, we exalt your name, O God. Thank you for this night, O God, we are in your presence. Hallelujah, there is deliverance in your presence, O God, there is healing in your presence, O God. Thank you, Father, thank you, Jesus. Hallelujah, thank you for the wonderful word, thank you for the prayers and the songs, O God. Thank you, O God, for the praises. You are the God to get our praises, O Father. We praise you, we glorify you, O Lord. Thank you for this time, O God. We are awake in your presence, Lord. This is your, Lord, blessing. You gave us the blessing, the prayer, victory, O God. Lord, I pray for Sumita. Thank you and bless her, O God. Put your word into her mouth day by day. O God, let her sing new songs for you, Father Lord. Lahara bandura shikari bandura. O mahimanita riandurisha laba. O yes, Lord. O hallelujah. Where is the spirit of the Lord? There is deliverance of God. Lord, thank you for your mighty power. Thank you for your presence. Thank you for your spirit. Bless me abundantly, O God. Give her more and more and more and blessings of God, anointing. Bless her husband because she is in your presence, that you bless her husband, O God. O mighty Father, when Abraham was praying, Lord, you send the angel, O God, to protect his nephew, O God Almighty. Thank you. Today we are here praising and praying. Lord, you are sending your angels to protect our families. Thank you. Bless Sumita abundantly. Lord, while she is in Italy, Lord, bless whatever they are doing. Lord, you touch that and bless that. While they are here, when they travel back to Paris, be with them, guide them. Oh God, we hand over all this situation to your hand. Oh God, you lead her as a father. You are the father. Lord, the worldly fathers, they are, Lord, they are went. We don't have, but we have the Father in heaven. Lord, Father, we hand over to you. Bless her, give her peace and joy. To whom she's praying, answer all the prayers. We pray for her husband, her husband's brother, the Madam Christine, and we pray for Jonathan, and we pray for other, the mother and the son of God. What they are saying, he's sick. Lord, every prayer request we hand over to you. We hand over Hilda to you, oh God. We don't know. We hand over our mother to you, God. Everything and everybody we hand over to you, because you know everything, everything. You do good for us, oh God. We praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, oh Lord. We hand over, oh Lord, when we go to bed, be with us, guide us. Tomorrow we woke up, and let us praise, let us glorify you, Father. Thank you for everything. God bless all of us, oh God. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Mm. Amen. Thank you, Sumita.
0: God bless you, sister. Two words I want to share for you, like Apocalypse, Revelation chapter 21:4 and Isaiah chapter 25:8. It is very wonderful words. I 2 points here I am share you. One, there is Revelation 4 saying, I will wipe away every tears for you. There shall be no more death, no more sorrow, no the fall, anything pass away. And here Isaiah speaking, not only God wiping, but he's everyone, not only one person is wiped. He wiping all the world tears, he's wiping.
1: Amen.
0: And all the sicknesses take away. Death take away, worriness take away, and he is giving the peace for us, every each of them.
1: Amen. Thank you, Jesus.
0: Wonderful evening. I'm doing these two things now. Then the some Isaiah chapter, little 60:33. There is all telling God is going to deliver for every each of them.
1: Amen. Hallelujah.
0: Because he is the, he knows ki na all the world is more and more going to darkness. When God going to dish all darkness, going to remove.
1: So thank you, Lord.
0: Let my sick, worriness, problems, angry, all of this God want to remove.
1: Amen.
0: That's it.
1: Thank you, Sumita. God bless you.
0: Bye. Good night.
1: Good night. Good night. Yes, Lord. Hallelujah. Stotram Andavare. Amappa Nandri. Velipaduthal Andavare. Ninga sonna vannamaga. எல்லா கண்ணீரையும் துடைக்கிற தேவன், ஆண்டவரே கட்டுகளை அறுக்கிற தேவன், எல்லா முகங்களிலும் கண்ணீரை துடைக்கிற கர்த்தர், இந்த நாளிலே நீங்கள் கொடுத்த அருமையான வார்த்தைக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். ஐசாயா 25:8 வசனத்துக்காக ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். அப்பா, உங்களுடைய ஜீவ வார்த்தைகளுக்காக நன்றி அப்பா, நன்றி நன்றி நன்றி. இந்த வார்த்தையின்படி எல்லா முகங்களிலும் இருந்து கண்ணீரை துடைக்க வல்ல தெய்வம் எங்கள் இயேசுவே, நீங்க மட்டும்தான் ராஜா. உங்களை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம். உங்களை துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். பரிசுத்தரே, உங்களை துதிக்கிறோம். படைத்தவரே, உங்களை துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். நல்லவரே, உங்களை துதிக்கிறோம். வல்லவரே, உங்களை துதிக்கிறோம். பாக்குமாறாத தெய்வமே, உங்களை துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். துணையாளருக்கு ஸ்தோத்திரம். தேற்றரவாளரே, உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, நன்றி செலுத்தி உங்களை துதிக்கிறோம். மற்றும் ஆகமுடைய சமூகத்தில் வந்து நின்று ஜெபிக்க துதித்து ஆராதிக்க தந்த கிருபிகளுக்கு நன்றி, நன்றி, நன்றி. சுமிதாவை ஆசீர்வதிங்களுடைய கணவனை ஆசீர்வதிங்களுடைய கணவனுடைய அண்ணனை ஆசீர்வதிங்க. ஆண்டவரே, அவள் சொன்ன எல்லா விண்ணப்பத்துக்கும் தேவன் பதில் கொடுத்து ஆசீர்வதிங்கப்பா. ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். எங்கள் இயேசு தெய்வமே, உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். எங்கள் இயேசு ராஜாவே, உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். உங்களை துதிக்கிறோம். நாளைய தினத்திலே நடக்க இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜப ஆராதனைகளையும் உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். அவர் இணைப்புகளையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஜெபிக்க வருகிற ஒவ்வொரு தேவ ஊழியர்கள், தேவதாசர்கள், ஜனங்கள், ஜாதிகள், விசுவாச குடும்பங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். பிதாவே, உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். துணையாளரே, ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே.